अट सड तीर्थ जे नव उतर नहीं मैं। जिन पड़ंदर बार गुजरते पले संसार, तिन्हों लगा रब सेती देखने विचार। रंग सह रंग रूप है।

नाई वाग्रि सैदा सैदा बल्ले आरे सैदा सैदा बल्ले आरे सचिया सैदा सैदा बल्ले आरे तो दिया गे आरे दास हमारी वाग्रि तो दिया गे आरे दास हमारी वाग्रि

चेत आवन का सदका सर्व सुख वे काल से जी की देख तेख फतह चौंकिया चंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा दी सावे बोलारे खालसे जी नो नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रक्षा दान खालसे जी नो श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे इशनान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बलार श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा अटल जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी काल सर जी

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है।

ख्याल है अखंड है, न रोग है, न सुख है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीत है, न सूज है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभ्रम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेक है, बली रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति बनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बड्डे तपस्तपे विशेखिय बयंत बयंत बयंत को करंत पाठ पेखिय अगाध आदि देव की अनाद बात मानिय न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिय सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सूद है त्व प्रसाद रुआमल छंद रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद पुरक सोधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त कीड़ बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर बिखे रमे

जाच के नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेद नेद पुकार हे शिव सक्रो मुख चार सर्व सपत पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा काद तेजा नाद मूरत अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे अभिराज धीराज राज प्रवीन जाच गंधर्व देव दानु न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णंगे बिखे विराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का स्वरूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपद पतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस वन नह नेत पूरन होत सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त सके महागव गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सबू मिल

देह गे ना ने सने अबे नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हरता सर्व दयालत वेख चक्र चिहन ना बरन जा को जात पात ना फेक रूप रेख ना रंग जा।

वरण चिहना चक्र जा को चक्र चिहनाकार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेख न वरण श्रव दाता श्रव ज्ञाता श्रव भू को वरण दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाद।

गंधर्व किन्नर मंच कछ अपार भूमका जले थले मेहमानिये जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद। मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद। अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व कर्ता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुक्ता सर्व जोगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन।

इंद्र वेद व्यास करे कई दिन कूट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सभय गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न मद जाको भूत भव भवान सत दुआपर तृतीय कल जुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सभय नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुगुड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक कब तरक दोहरा को निंदा जस है कव

दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते चरा सुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय होशी मैखा सुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूपते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन मैक मथे दानो प्रहारन नरक निवारण न दम।

विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अत्सित जमके फुंक फनंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणी फुंकारण जोत जिते सरधार बिपरखण दुष्ट प्रखरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भूमा कासल उर्दाधे दामनी प्रहासन सुक्षम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नाचन धरम वृते श्रोणत चिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अघ ओग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते वणि अर्भंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भरम बिना संधरम दुजे भुंगुरु घमंकण सहस्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम दुजे अष्टाढ़ प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सीमा का सुर मर्दन आद कुमार अकाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठार निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण नदम उदारण तेज प्रकरखण दुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाद अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी शस्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी दुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके याद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन रमक परदन दैत जिने बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोच बिसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुप्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आद अनाथ अगा दुर्धंग घंट का बिराजे रुण झुन बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल्बिक भाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन रिज्जे सब न भज्जे रूहुरनं जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रत्ये धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गते मृडलाज बेहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति दोदारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन विश्व विदुन संसृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवीय प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदर

चचरासुर मारन नरक निवारण पतिदोदारण एक बटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानंचारे नरक निवारे पतिदोदारे मुंड मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दन दान वर्दन विदाल वधे सरधार विवरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म दुजे धूमराज विदुंसन सुनत चुनसन सोम।

भूतन भय अनंत तव कहू जथामत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद्वय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब भेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए अंछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अनाश सब रोग सुख ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जेह जात पात नहीं भेद भरम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी न जाए जेह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जेह शत्रु मित्र नहीं पुत्र व्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चिहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं करम काल सब जीव जंत की करत पाल और दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंधन दुरंत जेह नेत नेत निस दिन उचरंत पायु न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवये दीनन की प्रतपाल कर नित संत उबार गनीमन गारे पछ पशु नक नाक नराधिव सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक दराज करोग रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिनापत स्यों किंसरी पदमापत पाए आद अनंत अगाध दवैक्सो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनाथम अबाग दुख अछिद्र अच है लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे अच्छा है जान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरे सत

राखत है अपनो कर दया कर पाव समूह न भेट न पावे और की बात कहा कह तू सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जाछ भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसातल जाछ भुजंग सब है सिरन्यावे पाय सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजे असुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से और मनारिक से सब हु मिल गायो वेद कते वन भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निपान सब बजहारे वेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे आद अनादा गाद बेगत वैग जप्यो तिन ही कुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश बिरयो कर भेष बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग

अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया।

कै बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ करासी है अनासी कै के मानी है जंत्र हूँ न जात जय की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सुछट्टा के अन्न मानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दात है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है कुनन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को पोकत के वृद्धता के बासी है जो कहूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को वरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार अवार हूँ को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी हलब विद्या वह पूर्वी न पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाद अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया द्रोम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के चीर कैसे छीरा वध छाछ किसी छतरा नेर छपा कर कैसे छब काल निद्रि के कूल के हंसनी से सी हरूम ही रसी हो सेना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सिके दुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप अकमाऊ सर्व ठौर मैं बिराजे जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र देयता पिनाथ कीरत

तो मैं छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो पर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास नवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जूं करियो रच्छा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर पिशन प्रगासा, सकल काल का किया तमासा।

सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका

का चीनत नह भिव आप नी बुद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतभज खान बहर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट अंजाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छह सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फांस ते ताही उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैल हो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अजधुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख नत सह ब्यापत कोई अडल।

चित तम धरो अब रीज के देहो वह हम कौ जहां बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रव धर्म जद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जद बेचारे देह अनत नानत रह जस नाव चढ़ भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे। ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार भारे दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। विष्ण भगत की ये फल होई आद ब्याह छह सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड वधि प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लिहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब तिकू आख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा।

होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख और उधारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनु जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मह रामत होई सतगुर

सत्संग जी गुरु साहब जी का लंगर तैयार है, प्रसादा छक कर गुरु महाराज दियां खुशियां प्राप्त करो।

गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सत विचार, गुरु कर रही मन मेरे। गुर कर

संगत जी, उस प्रभु परमात्मा के अरदास करिए जो सानू इस गुरु गोबिंद सिंह जी की नगरी विखे सानू तखत श्री हजूर साहब के दर्शन कराए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा होई ता असी इस स्थान ते उस प्रभु परमात्मा का नाम जप रहे हाँ। आओ नाल नाल जपना है ता जो जपण का आनंद सुनन का आनंद बने ते उस प्रभु परमात्मा नाल लिव जुड़े।

खंडा जाके हाथ में कलगी सोहे शीश, सो हमरी रक्षा करे गुर कलगी धर जगदीश, सो हम

सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे त्रिलो सच्चा कार सच्चे त्रिखंड सर्व विचार सच्चा त्रामर सच्चा दीवान सच्चा त्रा कर्म सच्चा प्रमाण सच्चा त्रा कर्म सच्चा निशान सच्चे दुधा के करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सबजोर सच्ची तेरी शिव सच्चे साला सच्चे त्रिगुत्र सच्चे पातशाह